बायला कहीं गा बेले के मिथिल ले आना वाल दंग का है मिथिला को दा मिथिल लेते हैं बेले अल बुंदी ने मुर्ग के आवा अल बुंदी ने मुर्ग के आवा इन आयलों पोरंदे मिथिल इन इलों अब को आओ कहीं न दो दिक बरसे अब बिलें भी नमा सासों अब बिलें भी न को आगलन से कम गने खेला आंबा को अनुमस कम ये कर रहे निकला आंबा नजर दे जा रुसी डॉक बस के नो अब बिलें भी नो अब बिलें भी न अब बिलें भी लिटे अरं आयलों जी अरं दो से आय जिरमो नमे दो कर अब बिलें भी अरं आय जिरमो डॉक बसें बसें मरन लिटे आवाज बस एंग न देर ले भी हो क्वाल कहने के लिए कि पोर नमे जो खानी किंग फासी इतिंगल बुंदी न मुर्के आवा अल इलोंग इंदुओ इंदुओ से ससों आप बिलें भी न क्या संगा कावरे बा मैं अल बुंदी न मुर्के आवा इन नमा डाइम मितली इतने न कोई नहीं आ रखा हाँ मुर्के आवा इन्हीं बा मुर्के आवा इन्हीं बा इंदुओ अल दोसे करेगा बिलें भी इतने की इंदुओ अल कुमे न इंदुओ जब भी आ दो क्वा कोई लवासंग कावरे कहाँ कोई लवासन कर रहा है इलाह कोई लवासन कर रहा है अन्न की उंगली कुल सी इंदुओं में बेले दियो कहीं न इंदुओं दो तुल्ले आए बा न दो कर रहे दो से अब बिलें भी न इनसे वो इनको न चर्टें को न ऐर को न खिला आम बा इलावों न मैं यही न की उंगली अंगिल इंदुओं से क्या सांग कर रहे बा की उंगली Nang itim popoko, apa itim popoko ay liamat den jarusi matning itim kalifia nang abil nga fi popoko andiyo nialang kerapi.

0: हाँ नमो कल जेना भाईमात से बोलो भाईमात से अलवा स्क्वा जल मुरु जंग भाईमात नमो दोक्त बुतुस नमो दफा ईस पे यारो भाईमात दे लेने से जया भाईमात देन सब बने से जया भाई तू देन सब बने से जया ले ये दो खेन को अकेला आशा क्यों ना भाई तू मुझे के पाता अब बिलंग मन पी ना स्क्वा नमो तुमको जी जलूम सही आय मैं तो नहीं ना लो मनोवार हैं अल भी यो ना सिंवाल तो रही हैं अल भी तो उतना नहीं तो सो हैं बंद तू रख अल भी यो ना सिंवाया बंद तू ये दिया और रियल कुरुमा बंग आज वही ना हुआ अल भी तो नीले दी ना मैं सब तब तू तो रख हैं हेल्ला नंदो अल भाई मात हिले यो भाई मात से अल बस इन हुआ अभी की अल कोंगा माल भी निरकवा बंग अलवी बंदेल लेन भाई मत नमाज हम को इंदी नम को ऐसी क्या लग मन कर ऐसे ये टिंबा आके ये आंगे नमाज दुल्लत दिने तो बोतु सो ही अब जो के लोग को ऐसी ना किंबला आशा जो दूर तो दुख से ना तो जो जल तोरो जंग बोले जल मुरु जंग वाला इन जंग जंग को ना इन ऊसी अल कारेली कारेली ये अल कारेली नमाज लोग को इंजारुआ इलावा अल मुरु अल बुंदे मुरु ना ना मुरु क्या होगा इले दो ले आ अरंग एल नेल ने दिलो उन्दुल यानस बाय के ताने वो तो दो की दस हंगवा वाले हंगवा बजल तोर जाऊं वाला मुरु जाऊं आमान ये साइनस अल्लाई अबा अबा एल बंग इंग ओन डोमेन यानस देन जारो को रेन दें जारो इन सुखा का लियो न दें आते हमरे नना इना लालों बना वार इलाइन न न्यान बैंटूले पागो नं जालं बैंटूजी अब्बे लंबिया न न वार बैंटूजी नंतो मालं अब्बे लंबिया बैंटू नंतो बुतु जो नंतो जो जावल न लो हैर यां न्यासे इवी नंतो इनो खासे अब्बे लंबी नं बैमा ले यां नंतो बैमा से कुआ बैमा न दो लेदने तो बुतु जो नंजीपनी ना बाया रे बातले नहीं आके बात नहीं क्यूल बात नहीं तो तू तो इलावो नमस इन इवो क्यों को आना इन्ह लाकर ना बना वार अब जो उन्हें यहाँ से अब लें जो हो ना अलम की क्यों को उन दूर जो ना इला बाये अल्पोर दूं इन बिलें अल्बुंदी ने मुरुबा रखे होगा इलावो में कोई जरूर की अको एल बना पुंडिया ने क्वा हो अब लेंगे कि वह क्वा कान देना क्वा किंदी और इनका न पुतु कारे न क्वा से क्लियर कहो वो दो भी दो आवास दें और ले तो चिकी एंग काय बिर नमतमर
1: नमसिंग काय थी इंगिसं वा अरंबाई की वो अंकना बेले की मितिल bela ke bitir kwa kitinye asafu wa kangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535976055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور نور العالم. يا تنور ده، وهل في نور عظيم جدا هو نور العالم كله؟